0: Thanks to your efforts, Mr. President, new hope for peace and stability in the region has been rekindled, and I'm confident that this will lead to a long-standing peace in the region.
1: एक्सेलेंसी आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है.
0: Mr. President, you and I agree that keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy.
1: एक्सेलेंसी हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए.
0: India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that.
1: Excellency, aap jante hain ki maritime trade ki duniya mein Bharat ke lakhon seafarers aaj duniya ke alag alag samundar mein apni sevaen de rahe hain, vishv ki pragati mein bahut bada yogdan de rahe hain, aur main samajhta hu ki unki suraksha bhi utna hi mahatvapurna hai.
0: Mr. President, you are aware